0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मालो ए मीरियम मीरियम नती मीरियम है नती ए मीरियम ने मीरियम मीरियम बनान तो जो नूं युवा खांपो की चरु मरत हंगा हंगा हाउडों हुई गुम चकलियम पिजे न्याओ न्याओ मी की थोड़ा पाखोल मिचाई खुबा आयो यो पांगल मरी कंबत पक्ति लाई बक्षित करी लाई बंदो शिबो
1: सना मताई की तंगां तो मालो मीरियम नती
0: सना की मनाए पाखोलोई लाइरे नुबी दुके खया ते की नाथोक न बहो न बदल लंफई कया खागी खामरंग तखेल देखाओ कनदे लाइरे इनके खया ता मुहन न चटपतारी मीरियम ऐ
1: मा दिगई कारा मा दिगई कार मी अंदस्तरा एकारा रे मा मीरियम इम्फा अंद हनग्रनो लाइरे इन की रबदी ngasi lele ro jiri da hayeng na lakhipur da guru ji sarga lak piyo premananda swami
0: miya mamang dai bu khongoi na ge haiba
1: andastar da ekar da tapune yangana ba double ekar tamak paranang
0: tamakte
1: to aduna de nang miriam oiro miriam choidana oini nang na khudo minada thinbada lakhipur gi ningon mau sing aduna jago isagani isai sakani नंगे याथंग तो पांग नबी दमकता लखीपुर की सात्र सात्री नहारों सिंह दुना मखुत लोन दुना गाय गनी अपंग बा पांग दबा मी दना ताईबंग पाला से हिंगभम नहीं तबा ओठोक तबा मपम नहीं हाई जब की वाने आई उरे तुम्हारो भाई आई कोई हिंगनी हिंगी लेम ना सोई दना
0: सही तरह लं पैसा वो न कोई रुड़गा हो जी पु करी उरे बगे ने बाबा हन
1: सेम तालुई कानदी मिंचत तालुई फंगदे नुपी थी खंगदे सही तरह की मतुंगा हल्लनी नसी इपाम लखीपुर दा करीपुर का हंजनी तंफा खुदो ब्याई हुई बनतना
0: ए कदाई देगी नंगों देगी

0: देखिए करम ना
1: गुरुजी हाये लखीपुर द लागियो कला की महाविद्यालय में लिखल रुसी आईना मीतई की सरित सराट हक्जांग साजेन थौदो इना लेवा मंत्र तंबिनी
0: अवे रने सन क्या मारजीत
1: कौन मुछलो दुनिया मांगसनो इमानी दी हिंगताई

0: वर्तमान युगे आइबा है तब छोइन दरकार लेते महाकु एमएरो गाना बजना तो डॉक्टर है फंगल बजानो लखीपुर की महाविद्यालय योग्य यूनिवर्सिटी उच्च श्रेणी सर्टिफिकेट चाहे
1: निश्चय आसे सुनेसी दादा मशाई बाजार ठेके के ना सर्टिफिकेट की ना ता तो बोलते पारी ना
2: मणिपुर की बाजार डबू सर्टिफिकेट जो लिहाई ब्रो का
1: मैं श्री श्री गोविंद जी से कुनो किस्सो असंभव ना है
2: मैट्रिक सर्टिफिकेट ने 50 तक आदा बीग ने 100 तक आदा एमए ने 200 तक औरम भैया ये
1: हमारे बाबा हन लखीपुर ठाडो लगा पृथ्वी कोई रुने चही तरह छुरे सर्टिफिकेट रंग उपमा ठन्न पुरे मारुजे महाविद्यालय सीधा आचार्य जो पामी प्रोफेसर
0: प्रोफेसर
1: आज्ञा हाँ
2: करी करी विषय तो बिने है एक बगे उजाड़
1: कौन एक विषय तार सर्टिफिकेट अथवा प्रशंसा पत्र ये रंगुपु बीत
0: लखीपुर बाबा हल
1: आज्ञा हाँ
0: बेस तो बोलूं की विषय तीन निपुण बा पारदर्शी
1: मणिपुर की लाइवा तीन वा लाइसोन तीन छोन इरात पूजा ไลฮราบาไลบุกจงบากังเยชานบาตางชานบาตางลอนไคยอมลักปะจาบานทาบาทุกตวะเยดิงทาบางาทาบากาวทาบาฮุกดวงทาดอกลอนเจรอบกิจาทาดอกลอนอะดุกาชะรวยคังบลอนอะมะดิตะเรงเลบิดาพาสลัสออนัสมานอยีริซาสตอร์เบฮิรมนา
0: ลังเทรมะโตนมะดีไตเรมะนาซิเจนะรอซาบาซาบาลักขีปุเรบาบาหันมานุโซเยเซเนตโยเยเซดาดาโมไซไมตรีบาตะกีนอนะทุเลไฮโบซาตะบุกะรีปาสนิไฮบะเกมะเฮดีไลบุไลรีมะซังมะโตงางซังงางบุกัมโตเวไฮกะกาทิโตอะมะดุนะกะรีดิริกีผังละบะจาโนไฮมะซังมะโตซุตาโอไฮอิมาโกเวยาบะมิตาระฮานะคะนะฮุชิเน
1: โอ้ยามาดูมามิงนาเปรมานันโดสวามีกวยฮะกุจูนาคริสโนบรโนเมอบุบุลิจินตอซาปีตานอยอนจุกอลนคตรัยมอตุอุจจอนมาดิมามิตอนีดุนาทวานมายากุมลังบาเยงมะกิเปนมะนายดะบาเอบงตาดอนโตสเรนีมายาปะเรงะดุนาลูโฮมะกิไลดานคุนโดปะเรมุงัมจะบาอะกุจูโด
0: नमस्कार
3: अदुदे साबासी हौन बतौरसी लखीपुर की गांव बुराना नसी हौगकतोरिबा महाविद्यालय सिगी सभापति ओइना आइना हाइजरी
0: आइना समर्थन तौजरे
3: अजे प्रधान अतिथि ओबिरिबा इकाई खुमनेबदा मतिकचारबा आइगी मरुप प्रेमानंद स्वामी साम बे गीत बिसारक ने लखनऊ देगी कर्नाटिक म्यूजिक ता एमए पास ने हौजिंग ना मॉडर्न लव सॉन्ग दा रिसास तोरी बदल लोग से पुरबा असम दे युम पालमी तो मालो अब मिंथो लोग दना सना जावी कोबी महा महादेवी में लोग दरा तंगांग उपाधि पंगी देवी दो मबुक सेंगी नहा मस्सा येंग में नुआई बकोई नती उपाधि पीग दबगी मान पीव उपाधि सी कुंत्रा मापन देगी निफू एक शुभसिदा ओजा तो मालू अच्छे सावे ममांग दो उपाधि लंखाई रे मेरगा लंखाई से मिना रोई इसे ही तमिना रोई नारी जाति नूपी है बजा से माँ हो जी नारी लेबल लिंडु मुखा हो जी ती गेट बिसारत एमए से साधु ऋषि ओले महाग ना हो जी महाविद्यालय सिदा अध्यापक ओबीगी है ना याबदी महाविद्यालय सिगे लाइव फबनी सि हायर गाई दी लोई जरे
0: आ फारे मतिंग मगुन खबर कागज दे याओ बदी मटारे अदु इसे दो थबक वेन पांग थोक तुना इसे मतिंग मतंग सतना तरा मचाबू

0: अरे इसे ही वजह की थी यार।
1: अरे बाबा हल जो अध्यापक हो ये हरि बनीना मां कुछ परीक्षा मत ये मल्लो बगी मठौ तादरो की बोलेन बैकुंठो बाबू
2: अध्यापक हो ये हजना दरखास्त थार नबनीना मटिक जाय जाडे खंग नबा परीक्षा मत ये मल्लो बडी मठौ ताबने बाबा हन बाबू न तमी जे हरि बबिशोयना मीटेरोलॉजी हब नत्रो
3: ओय माने होय काका मसाय
4: मेटेरोलॉजी हाइब्रा नत्रगा मेटेरोलॉजी हाइब्रा आठदो उदु सिदोपियो
3: मेटेरोलॉजी मेटेरोलॉजी मानी अमहानी मेटेरोलॉजी मेटेरोलॉजी
5: क्रम न अहा ओइ दुरीबा
3: नति कंट्रोल ती अमहा ओइ न तवी हाइबने नखै साइंस नंबर छात्र सिंगना मेटेरोलॉजी हाइबसे करी हैन आठाली
5: अतियागी हवा नु छि कि मरम द नै न साइंस पु मेटेरोलॉजी कोइ
3: अ मितै कि लोनसत लिसत मना की मरमदा नई नव साइंस पु मीटेरोलॉजी है नको
5: ओजाबु मीटे हाइबगा मीटे हाइबगा अनिसि कई दखे नबगे करम बन चुमगे मीटे मीटे
3: मीटे मीटे अनि मक चुमी बनान द खैतंग तैन नबई वान
6: ब्यूट पट्टी आठो वापुक लोन दो अमतो नै नबियु मीटे मीटे
3: मीटे हाइबसिना खोंनां खोंग फंबी क्वायोन बिगी छंग मजा
5: करम न
3: हाइबदि क्वाले चाब लाख सिंगना सुनु अहेंबा तैसन बिरमबा मी हाइबदि मरेबा मसा सिंग आसामी बेंगोली हिंदू मुस्लिम नेपाली मिया मसिना तैसन बिरमबा मी मी तै
5: मी
3: मी तै ना फी सेटपदा नामै हापा हिरपदगी मीतै असिबु मईतै बा मईतै हैन कौने
5: ओजाउ दुके सुवेन
6: अदु दि सुवेन
3: यानिंग मेगा प्रकाद नंबर फंक्चर होय मईतै रो लोजे दे आइ कोइन हाय घर लोय रे खेत पी न बले तनी खंगो छोपन गोयाय
7: ओजाबु मईतै लोन गा मणिपुरी लोन गा कई देखे न बगे
3: मीतै लोन हाय बसिना हिंदी इंग्रजी संस्कृत बंगाली वहाय सिंग असे यान यान संद्रिंगाय दा मीतै की वाहै ngakta china ba lon na adu bu mitai lon aduga hojik singtam hindu muslim mitai mayang mayang masina lon na riba singju lon na sibuna manipuri lon haina kawe
7: azabu maya wahai masibu kamdo bujanu aizening kleda
3: hai mai mai go una bada mai pa na ba laiwa adu bu मायो वा हैने कवे
8: मदु बुगाना बजानो ओजा हैनिं खरेदा
3: ए सिजिन नबा हैरबदि काने खबजानी तंबिनीदा
7: ओजाबु कानाबाय प्रमाण फंगबिख्रबो
3: लाइवा गलोइनाना अम्मा दुगी मम्मी तन्ना कामबा अदुगा माइथों वचिता नफे नफे कौनिंगबगी मतौ तराम तराम
2: फोमगी पले फमनाय द्रव सोमोयसिला थायनगी लोंचट लिचट मीटेरोलॉजी दुबो करी कारनुगे
3: याम कानरी काका मसाय मीतेई न मसाबु मसक खंजबा हाइबसे मठौता नत्रबदी सही चा खरगी बतुंगदा मीतेई से मी न तैसन दिन मन बदेगे असेंग मसक असे मांगि बियाई काका
0: आ फरे सभा से लोशन न बतोर से आ नंग वजागी लेफम चाफम हिप्न चानलबा छात्र साथी नखोय मे हम चंगदन सिल्लो आई नहीं है कि हर बती वजा गुरु खल्लू वजा ने यान पर चलू लम्हें गनु को गंगा आ आई की दी सीने लो जाए
2: आ होना रो होना रो अपने थोड़ा यम हम लोग को वजा की सेवा तू अरुण जी स्वामी जी नमस्कार नमस्कार
9: नमस्कार नमस्कार अरुण जी स्वामी जी बास तो बिना बा आश्रम में तंग नियंग ताबीर सी
10: आ न कोई की नरांदर बाबा है बतू खुरुम नहीं खरीदा
7: हैं कोई रोम शिवजा
10: अदुगा न कोई की बरात तुरेल है बतू न कदाई दा
7: कोई ताऊ पियो जा जसे चल शिवजा
11: लुंग पास दि अंगक पनि भाई
12: मन भाई
11: थाजे थाजे द्र मी वाकल जाम रे ने मंग ने ग द ताई मंग ने ग द
12: ngrang gi oza sadu amadi lakhipur gi pandit baba hal gi meteorology du natro
11: mane
12: mane sadu du bu shin lab jalo baba hal gi phagi du da ekhuna thajara dro adu ne
11: bhai akhu ji hing ye ji shin lab ni ne
12: hoji bodi hing li hayin yog dro khang di
13: hayin yog no ba ma khoi bu hingan ba ta atan ba khoi shu kai gum ba khare tam sin ne du ni hing ba ta ma khoi upalo hoile ga ekhuna
12: utangvi natragu unaple kwak nei khumale oine hingba taban natrabade ko hingbei kari kanari haiba wahang ama atyar gi lao pa tuina ta
11: ngai khong ngai ko
10: ai
11: unaple ani duna ngarang do lakwa uphok pamvi ni du ubade gi lucky pro gi yumre la khoi bu chu khi di chu chumro
5: ma khoi ani chu hingba pamna oi batai
12: ai khoi di chiba pam si hai ro
11: chiba pam du soro higai wa sana do hingki se
5: kamai na
11: kam sadu sadu na ti pandit pandit na ti unam lai na atei de nat ta ba ya de ha bu du un bu na du no hing ba ya bre ki se kai no
5: ko mo khoi bu si barak ta hi on du na naranda baba khore ma chak ni ha bi du bu chum la ba sa la ba
12: khoi ta lam na tu min sa khi de ni chum ta re da na
11: tha re tha je ning de pai tha je bu di tum ta ra bu ni
5: tha je tra bu di hing bu du re
12: ting bu du re ai ai ai ang ja na koi ki wa ja ni du u bra
5: khoi tri mi ga
11: khoi tri mi bne
2: ang ang sing na di nu pi ma ja ni lo pu ra ga mang khai na na ra do lo baba khurom khri bra ke ku lo pi sa na khri bra ang le khoi bu ka dai mwa lo de ge
11: ma tam na ne ka mo sa ko su kya ta de lai khurom ba sat pa tu da bo ya khoi e khoi yau bu ya su khang de ya de su khang de wa ja ni du su sei sa ba ya ba mi chang ni nat ti hai ja ba su ngam je de a nu pi ma sa ni du su ne bhakti lai bi or ma ya ye ishwar da khang de mi da khang de ai khoi na hai ja bi wa su ne ka la yin thi ba de gi hai ba ni na tra ga chum na ta gi chan ni cha ai ba gi le ma ning da hai ba ni khan bi ma su ai khan bi ma da su ya ye ka ka khoi hal ma na duniya si de ba ka ka ang ka ba ka de
2: a nu ge bu di su ba a khoi na ra chai tu pai de na lai bu si bu santana bra mi dana mi oraga karam mi dani hanle mi ba mi singse ki mana gande yei gadra natra ga mi dob sing tantho gadra ma ji madna so mo mi hai bese ya ma khal ni suri pi pa nati karam ba dono ei goire sa go dri su bo bhap da dabni ne bai kun
14: a du ki bo hai ro mi e dada ma sai ei koi na sangit mahavidyalo e ni khal laga मिचेरोजी का अंगांग सिंदा तभी हम जोड़ गए शिवो फिजे चक्चा चफन नब्रा नत्रगा लेरीबार नमीता नशम नब्रा भाप मुन्नताने जना तबुरी मुनाकरी ना
2: अदो बुद्धि पे कुंठो बाबा आई कोई शिन लखीपुर दल लेरीबरा नत्रगा लखीपुर ना आई कोई दल लेरीबरा नत्रे हरगा लखीपुर हरी बम मिंशिदा लम्से लेरीबरा नत्रगा लखीपुर रे लमदु द मिंग से लेरी बरा भाप ता दो बनी
14: मिंग न पोट के माने दे बाबा मु चही तरा मणिपुर रे लेरु रे हाय दुना मणिपुरी ने हाय गदरा लखीपुरी ने हाय गदरा ना त्रगा इसिंग द सु कंग भाल सु लेबा नाव छेक ने हाय गदरो
5: नाव छिन ने हाय उ द मणिपुर के लफु रो मने ने फार के चागे हदु कोता ने त ता ने अदु मिंग मिंग म पु छे या न तै जा दि द
12: अदु बुदि ए ख यु ओझा प्रेमा द स्वामी हाय रे छे
5: हां माने
12: अहां बदा तंगांग तो मालु ओइर मे हाय इतै म सिजे दुना हौसि साधु की भिए से लबो ओझा सिदा मा की ओक तब नि पा मांग की बदु लेर मे हाय द यै रे ब छै रे ब या रे
5: दुने छे दुने छे
11: मिंग जी दियो भाई या मौन नि गाइनी फोन द बरो इफे
15: पर नमस्कार
14: नमस्कार नमस्कार
15: नमस्कार
14: नरेंद्र बाबा खुरुमु बडिया करी करी बोर फम लेया मिंग बका थुमे रपलो अपनार खोइगो
5: इस भज करे दृश्य दो मिंग से हु करे
3: बोर नि नि एदि का व का रे अमुक से लुगी नि
12: आइ नु बि म सा सा नोय द कम दो रे ये नुंगाय रे प्रो
7: नुंगाय क का सी से न तारे कर कोई न गले हम लबदी अम के न नुंगाय रंग नि
5: ए कोई न सोन द न कोई मान खरे है न खुशो न रे बदी
12: कना मत तलम रे लून से कि निसा छि दे द
7: खुशो जाय गुरु बस क नि हाय द न खबर का स क नि हाजा हो रे
2: हां होय आ नहा व रे जा खरे नुंगाय हो बा आ फट बन ते
12: ए कोई हो जी पु
2: वैकुंठ बाबू
14: माने माने दादा मसाई जही दी वैकुंठ ना मनिंग हन चट्टे अदबो नाहवरी गैदा नमे मखई नुआय होबा अबसुनते फट बसुनते
2: अदबो दी वैकुंठ बाबू अहले कोई सो बर्तन फंगी मखई उछो ब्या होबा अबसुनते फट बसुनते
14: नटे नटे
11: नाहरो ना थवाय नुआय तगा साव बसु फते छाव दो बसु फते तंजा साय दुना बा हराव जु पते हराव दो सुया दे
5: ओजा का छात्र का पिकनिक खंग दे लाइक खुर में खंग दे जमीन न बद फब सुन दे फत सुन दे
3: छात्र छात्री में खई दा इसका संचत प लम कोमी न बा फब सुन दे फत सुन दे मखोय मरक ओजा याव ब फब सुन दे फत सुन दे
14: मणिपुर दशो 이세이 강제 자고 강제 라이 강제 담비고 오자나 사트리 로바 나 들어가 담미리바 사트로라 높이 오자나 마이운 반토 얘는 야마타 맞어 아이 하비수야 팟게 하비수야
1: 아두게 보디에 메군도 바보 한우비나 빠캉들 레이바 한우바나 레이사비 로바 Manipur da tawedna yam na tai
14: tai tai
1: masi aina sum khan bada mun ne khan bada phaye bisu yai phatiye bisu yai
7: hatta ba phaba hai bisu bu mi mi du giro samas giro samas ne hingli bisu bu mi giro mi ne hingli bisu bu samas giro waza mana sati ma laure ma de sata singa sawo yai samas ne sawo yai launa lainari ba ni de sawna ram lo makwe ani na samas bu sawo na jumra samas makwe ni bu sawo na jumra
16: na ha ma sa ma ga ahla ma ga ma sa ma sa na gyan ta na du na launa lain na kre ganda bi ba ta kre madu da dhara na sa ra ga ahlum na kap ka dro ahlo na sa ra ga dhara na kap ka dro no ka dro
17: samas si da ahlon yau ri na haron yau ri sau gan ba kap kan ba wa gan ba no kan ba yau ri magi magi kana ba kana da ba mang ba tum ba matungina samaza tu ki mi kharna sawi nu i kapi harawi yani yaning de kharna sawi

धन्यवाद टिंथोय। यह आकाशवाणी इम्फाल का शंघाई चैनल है। 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। मैं वाईकोम सिंह खंगानबा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा फर्ज है। आशा करते हैं हम सब मिलकर इस बात को जरूर अमल में लाएंगे। अब सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म रोजा से एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में। गीतकार है पी के मिश्र और संगीत ए आर रहमान का।

अगला गीत प्रस्तुत है सन 2005 में रिलीज हुई फिल्म लकी से लता मंगेशकर और अदनान सामी की आवाज़ में। गीतकार है समीर और संगीत अदनान सामी का।

गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत जतिन ललित का। साथियों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के संगाई चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गीतमाला। अब सुनते हैं फिल्म दिल ने जिसे अपना कहा से सुजाता त्रिवेदी और कमल खान का गाया गीत। गीतकार है महबूब और संगीत ए आर रहमान का।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म बॉम्बे से हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में, गीतकार है महबूब और संगीत ए आर रहमान का।

0: 루이지리.
1: 다한 적이바 마담이 세싱기 세색파마디 세링바싱 아한바다 노마이템 솔렌드로 세링바 브로젠드로 와행사 아니수비 세기 세색파 윰남 난디니 데비 세링바 라탄 고말로이 통범 아홈수바 마담이 세기 세색히비 세세키바 싱디 헤시남 르구마니 아마디 아한템 헤라마니 세링바나 아르케사나 한비 마리수바 마타미 세기 세색바 닝옴범 나오바 세링바나 유간디 마타미 세기 아로이바 세색바 오이남 스와미 쿠마르 세링바 팅바이잠 스와란 쿠마르 아가스 반 임팔 하우직 누미당 외람기 뿡망아 따리 마니푸리다 마로이바 파우타비르시
2: आकस पानी इंफाल हो जे पापु के मरो इबा पाउदा राज्य के गृह मंत्री गोविंद दास कोंठौ जमना हाइडी कुंची सही के कोई बगी पिबा मंगाक सेनबा निमित की मरो इबा पाउजेल दी मियो इबा इखै की क्वाडी की मरो इबा ओजादी प्रकृति ने ओइरी हाइबसिनी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड सिंधु ने इंफाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर डंगसी पंगठो कीबा वर्ल्ड एनवायरनमेंट निमित पालनदा सरुक या कीबा गृह मंत्री ने वापो मजे पुंडो कीबनी एक पेर मा की नाम कैंपेन 3.0 इम्फाल जिला की तागेल दलेबा साई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फोरिया समसुंग हेड ऑफ फोरिया स्पोर्ट्स की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग बाजपाइन हौदोखड़े थरम जुदो वांगा बदा श्री बाजपाइन हाई उजारा था की कैंपेन असी सही असी के सेप्टेम्बर था फावो सठगनी नेशन टोबेको सेंटर प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी तमिलनाडु सिंधुन जिला असी की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द वर्ल्ड नो टोबेको डे लिसिंगनी कुंतरुक पंगथोखड़े राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने था आज की कुलम द्वैत पंगठों की बानी सुबह सिविल

0: खुंगंगी थोरम ताबिरी अदुर्म थोरम ताबिरी बस्सी आकाशवाणी इम्फाल की निमिदांगी थोरम सिंह ने आकाशवाणी इम्फाल ngasi numidang pung mapan makai tabo matamda kangla channel da sandok sagani yai fa yumban gi lila macha aishunati nang sunati laina tari lila iba wangkai mayum anita devi lila puthok par tengbang ba hem chan ning thaujam lila puthok pa thok chom renu wala khanghan jaba akaswani infal gi music section gi bi dagi bi hai kananab gi music audition लाखलीब जून की तांग निपानी हौजरगनी एडमिट कार्ड लोबी खरब कैंडिडेट सिंह इसा इसा की ऑडिशन निमित सिंह आकाशवाणी इम्फाल की नोटिस बोर्ड की येंबीरनब निंसिंगजरी अमुकन खंगनजरी आकाशवाणी इम्फाल की म्यूजिक सेक्शन की बीर की बी हाई कानब की म्यूजिक ऑडिशन लाखलीब जून की तांग निपानी हौजरगनी एडमिट कार्ड लोबी खरब कैंडिडेट सिंह इसा इसा की ऑडिशन निमित सिंह आकाशवाणी इम्फाल की नोटिस बोर्ड की येंबीरनब निंसिंगजरी
1: ए तो इताओ
2: कुइरेदा उनखिदबा
1: होइने कुइरेदा इताओ नो एखोइनु उनखिदबसे करम करम पानबिरी
2: खंगदे दैताउ तौरिसे ngamna ngamna baiduni tauna khangbiri duni ai di pothok pothok pa miwai ni na ai di pothok singse miyamna pamna hanna gitamakta advertisement namta ugena kanna khalamni bani
1: ta kariya advertisement
2: hoi
1: hera adugidi karim dewaru ranu si si si kudakta matam amattada miyam sen thungna khanghan ba yaraba मिटन कुपदा मियोई मिलियन कयागी नाकोंग योहन बयारबा आकाशवाणी इम्फाल ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल दने एडवर्टाइजमेंट तौबिरो
2: होइनी तो मदुन फबतार
1: अदुनी ताओ अदुनी
3: असेंग बनी एडवर्टाइजमेंट की दमक तदी रेडियो न ख्वाइदे की फरब पामबैनी अदोंगे एडवर्टाइजमेंट की दमक आकाशवाणी इम्फाल की कमर्शियल सेक्शन गा तानबियो

0: 떨리고
1: 맘말기가 속할리 말해
0: 간드레디가 이노 낭보
1: 루파삼리 장마드기 호로가네 소이스 마야 몸술레라 미돌리
0: 오오 아두에이 따라가디 콰이드기 파바 옵션시 마시나 오이라니 나디칼리
1: 또또또또 오이도이네 마시나 콰이드기 파바
0: 옴나마쿠타람 나옥차리 아카스바니 임팔기 커머셜 섹션다 랭신비라우 아둠기 파우젤 미오이 라카카야다 요한자기
2: यार सच बताऊं अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: Lilisana Institute Lamboi Khongnang Khongda Paramedical Coursing Tamnabagi Admission Haujare Manipur University da Affiliate Tauraba Pharmacy Council of India na Recognized Tauraba Institute Asida D-Pharm DOTT DMLT Amadidiyar IT da 2 years course Tamnabagi Ming Chanbi Hauro Lowest and Affordable Fees Loinana IDP Singh Sports Person Schedule Caste Schedule Tribe Ki Tonganba Khudong Shabu Singh Shupi Jari Akupamarol Gidamak www.lilisanainstitute.in Telephone number 7640898288 to contact Tobio.
4: Kanghan Java, Akaswani Infalgi, Music Section Gi, B Degi B High Kananabagi, Music Audition, Lakli Bajungi Tangni Pandigi Hojargani, Admit Card Lobby Krava, Candidate Singna, Ishai Shagi, Audition Nimitsing, Akaswani Infalgi, Notice Board Degi Yang Birandaba, Ning Shingjari.

0: ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯟꯊꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯨ ꯃꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯝꯂꯣꯏ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯝꯂꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯇꯃꯛ ꯇꯧꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯄꯨꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯍꯤ 19 ꯁꯨꯔꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯛꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 30ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯆꯤꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯆꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯍꯌꯦꯡ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 6 ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 7 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯗꯕ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯖꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯁꯦꯝ ꯔꯣꯃꯥ
1: ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯁꯝꯃꯔꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ ꯑꯦꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ 2004 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ 2004 ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯁꯤ ꯑꯦꯅꯨꯋꯦꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯁꯝꯃꯔꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤ 2004 1-1-2005 ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯡ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯆꯍꯤ 20 ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯒꯦꯞꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ
0: ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯩꯄꯨꯜ ꯁꯦꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯣꯡꯉꯤꯜ 2 ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯤꯞ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯔꯁ ꯒ꯭ꯔꯍꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏꯔꯣꯝ ꯃꯥꯔꯁ ꯒ꯭ꯔꯍꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯤ ꯑꯀꯤꯅꯤꯅ ꯀꯨꯆꯨ ꯁꯪꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯪꯕ ꯑꯦꯂꯦꯟ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯖꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯐꯤꯛꯁꯟ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥꯅꯤ ꯁꯂꯥꯝꯁꯨ ꯂꯧꯈꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 7 ꯅꯨꯃꯤꯠꯌꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯤꯅꯤꯠ 10 ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯁꯣꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯏꯁꯥꯀꯥꯟꯇ ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ
2: ꯑꯀꯤꯅꯥ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯋꯥꯕ꯭ꯔꯥ
3: ꯑꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯒꯗ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯋꯥꯕꯤꯗꯦ ꯑꯩꯗꯤꯀꯣ ꯗꯕꯥꯒꯨꯂꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯠꯄ ꯐꯪꯉꯗꯤꯀꯣ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯕꯅꯤ
2: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤꯔꯥ
3: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯤ ꯀꯧꯔꯣꯏ ꯑꯆꯥꯏꯕꯨꯡ ꯀꯧꯒꯦꯀꯣ
2: ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ
3: ꯑꯗꯨꯕꯨꯔꯣ ꯑꯆꯥꯏꯕꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯕꯨꯏꯂꯣꯟꯗ ꯏꯕꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯆꯥꯏꯕꯨꯡ ꯅꯪꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯗꯕꯥꯒꯨꯂꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯁꯥꯡ ꯄꯔꯦꯡ ꯀꯥꯕꯤꯔꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯈꯪꯍꯟꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ
2: ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯅꯪꯕꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯂꯣꯏꯗ
3: ꯑꯣꯏꯕ
0: ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯂꯒ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯄꯣꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯍꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 9 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯀꯧꯅꯥꯅ ꯁꯥꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄ꯭ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯁꯟꯖꯨ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯒ ꯗꯦꯕꯦꯛꯇꯣ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ
4: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯏꯕꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯧꯅꯥ ꯕꯦꯒꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒ ꯆꯠꯂꯒ ꯄꯥꯏꯔꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯟꯂꯝꯒꯤ ꯃꯤꯅꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯒꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ti kongna bek se manipur da so tum painara bane ba shop ka set pa je kongna bek mi pa ko machine ja ai machine ti ni ne ai dis kongna bek kya pa de mi adu machine ji am ya me ba hojik ti painara ai sing ja aduna sigi market je hoine international gi thak ta bok do hoine khara phasana quality ga je maintain tau bi ra ba ale gi treatment phasana tau ba gi khudung ja ba sing je hoine ma thong thong tau ba ngam ba oi ta ra ga di ai khoi yam thina achau ba awon ba ma la ka ni adu ga khoi artisan jing da su ma palangi da tharak pahai ba siji mamman che dung khara di hengala ka duini dana aduna moi da su kongna gi moi gi khusu man che siju khara di dum hengalak pa ya ba gi mai kai ju ui na mai na hai ja ge
0: hai na balai yumban pun si di ture lengoi da gi su he na kupi hai na na da yektana haksang phana thamna ba gi damak khongthang khuding chekshin ba mathau tai lakli ba ning thauka ba namit नुंगथेल की पुंग मरी मिनट मंगा चतप मतमदा याइफ यम्बाल की थौरम द थमजरी ब्रेन ट्यूमर अमदी मसी गी लायंग हिरमसिदा डॉक्टर मयांग लंबम अमित कुमार का एको गी मिहुत लोयतोंग बम रंजना का उनदुन वरी साबा थौरम पुथोक पी थोकचोम रेनुबला
5: कोगी ब्रेन ट्यूमर सिदसु मागी स्टेज हाइज बतारे लाइब्रा अदुगा अदुमक ब्रेन ट्यूमर न नारगासु एकोई मतम छांगना दुम हिंगबया ब्रा सिसु खंगजेगे
6: स्टेजिंग हैना दुमाने दिके दोल रे दुगे मागी ग्रेडिंग होइन पि हाइ तारे गसागे ओले ब ट्यूमर से गसागे अखोइना ग्रेड 1 2 3 4 हाइ तारे ग्रेड 1 ओइरगदि हाइब ग्रेड 1 जे ओइ ओइ दे जदि अखोइना ऑपरेशन तोरकांदा गसाई ट्यूमर लथोकांदा बायोप्सी थारनी बायोप्सी थाब द कर्म खगे सेल न ओले ब ट्यूमर नो क्याम साथी ब्यूमर नो माइगी कहीं पेथोलॉजिस्ट ने डिटरमिन तौर रहनी ग्रेड फोर होगी मो लाइब चिफौदी ग्रेड फोर हो सब अपने ग्लायोब्लास्ट तो माइज साथी है तारे खाई ब्रेन से खाई साथी ब्यूमर ने लौने से मखल खर ले मोय क्या तारे मोये जेनेटिक मेकअप है तारे खर कोई हिंग कहना है तारे मोह लाइफ स्पान से साथी होगी सोगे होने सुमायना ले रही तुम रिसर्च की अनौब पमी थोलतने हेन एक्सपान तब की खेको एक्सपानो ग्रेड फोर होगी कहोसे हिंग लाइफ स्पान से इरे लेते है तारे ग्रेड वन गुम टू गुम होगी हाई मखा तान ट्यूमर अखोने ऑपरेशन तौर लौथी है तारे फिर क्लियर लौथोगी खर सा हिंग गम की कहो लेने खजे
0: मई इसीद मालेम अतिया करम कौगनी सकसु मानदबगुम थीजिन हमजिलीबसिंगसु मागी मागी वाखल अमदी पामजबा अमतमानदे अतियाद थोकलीबा थवान मिचाकसिंगना मरुप ओइजबा डॉक्टर रोनाल्डो लाइश्रमना करीबु हाइरीबा तामिनसे लागलीबा जुनगी तांग मापलगी अयोकी पुंग निपाल ताबा मतमदा नहारोलगी खंजलदा तामिनसे उनबिगदबी थोंगमबी इरोम
7: यम नुंगचे अद रोनाल्डो हजिक से मणिपुर की मियाम खक्त न तन पृथ्वी की मफम कया दगी ग्लोबल रिव्यू मैम अमलक पिरम ग थाने खंचे कमाई कमाई न लाख पिक
8: होय अदम लाइक लाख पसे साइंटिफिक किताब द लाख पया होय अदग अदि साइंटिफिक न तबि दग अदि लोटा कि मतान द लाख पसे होय बस पास ओवर साइंटिफिक द लाख मतान द अदि दिस इज अ इगे पतो क्लास से अनो बस को बरीजे very significant so ayoga atuna lakuma tamda dum thagar wahi yati okay de anoba ansarama phang have do aduma haibire do aduna mok scientific gre re natta vida ai collect sai tarai ai consume am sarlo re aduna collecting like usa europe japan china korea indonesia ate ate country de ko on instagram da de email da de whatsapp message sar pa ayoga what is low tag de aduma photo ge yanga sin manipur la nei low tag phaje ge na ra poko ate सेना दम औसाइड के कनोदे लाया दो इंडिया मनोंग द शम लाय थगर वाय आयु नुसी बिबाय तारे पर क्वाय देने या अंबते खै मणिपुर आइदे लोटा गथोन या नुसी बिबो को आई एम वेरी हम्बल वे बदन
0: खुबाक नाम त खुबा

सगोल सेम बिशोरब सिंग की खोंजेल दगे मतम इशे मा कुदोल तमजे खरब मतुंग दा अनिशुब दा तहंजरी माइबम माइमो की खोंजेल दगे थांगजम कोरा के मयक दा मा बो असुम खंदुन लेरे असुम ना सहयोब मतम इशे कुदोल तमजरी मैं पुने तमिनर से

0: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये स्त्राव छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
1: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पसीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरत यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है या 15 घंटे का।
1: Tengzil laklaba nubi dangi matam sida. Nubi chupa amatungan tungan ba silam sida pangburul ba marup singna. Wa na pothari ba matam sida. Akaswani Imphal FM sangai channel gi maikai digi. Git sing lantok tuna tahan jari. Kudol gi mari subuda tabirasi. Kishokumar na sesak liba gitama.

0: सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी, लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही, संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार।
1: भारत जमीन के किसी टुकड़े का नाम नहीं, बल्कि नाम है तहजीबों और धर्मों के संगम का, अलग अलग रंगों और खुशबुओं के गुलशन का। यहाँ के हर बाशिंदे के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और उमंग से होती है। भोर की ताजगी भरी हवा में चिड़ियों के मधुर कलरव के साथ एक और आवाज सुनाई देती है, और ये आवाज है आकाशवाणी के कार्यक्रमों के शुभारंभ की।

0: है।
1: लेकिन आकाशवाणी की यहां तक पहुंचने की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं है। ये उस समय की बात है जब देश में अपना संविधान लागू हुआ था।
0: भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आरंभ में लिखा है, हम भारत के लोग। आजादी मिलने के बाद संविधान के इन शब्दों ने एक तरफ जहां हमें नया लोकतंत्र दिया, तो वहीं दूसरी तरफ चुनौतियों का अथाह सागर भी। यहां शिक्षा, सामाजिक विकास और स्वावलंबन के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी था।
1: इस बीच भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास भी कर रहा था। चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई 1956 में भारत आए, बाद में उनके दो प्रतिनिधिमंडल भी भारत आए। हमने सभी का खुले दिल से स्वागत किया।

0: घर आए अतिथि का हमने हिंदी चीनी भाई भाई कहकर खुले दिल से स्वागत किया, किंतु चीन ने हमारे स्वागत का जवाब 1962 में भारत पर हमला करके दिया। चीन ने अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया। ये युद्ध 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक चला।
1: भारत इस युद्ध के लिए तैयार न था। परिणाम ये हुआ कि भारत के अनेक जवानों को अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा। देशवासियों के दिलों पर इसका गहरा असर हुआ।
0: एक महीने तक चले इस युद्ध के संकट काल में आकाशवाणी ने सैनिकों और आम जनता का मनोबल बढ़ाने का काम किया।

0: रेडियो प्रसारण के महत्व के बारे में बता रहे हैं। आकाशवाणी में लंबे समय तक विभिन्न दायित्वों को निभा चुके वरिष्ठ रेडियो ब्रॉडकास्टर धीरंजन मालवे।
1: किसी बाहरी आक्रमण या दैवी आपदा के समय देश को एकजुट करने में तो आकाशवाणी के योगदान को स्वतंत्र भारत के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। चाहे 1962 का चीनी आक्रमण हो या 1965, 1971 और 1999 का पाकिस्तान से संघर्ष हो या फिर 2025 का ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर कोविड आपदा, आकाशवाणी की ध्वनि तरंगे डोर बनकर देश को एक सूत्र में बांधने का काम करती रही हैं।
0: आकाशवाणी में विभिन्न दायित्वों के साथ साथ आपदा प्रबंधन का लंबा अनुभव रखने वाले वरिष्ठ रेडियो ब्रॉडकास्टर राजीव कुमार शुक्ल बताते हैं।
2: जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ऐसी आपदा में आम तौर पर सबसे जो अधिक पहला नुकसान होता है वो ये होता है कि बिजली चली जाती है। जब बिजली चली जाती है तो कई जो हमारे आजकल लोकप्रिय हो चुके भी माध्यम हैं संचार के, वो काम नहीं कर पाते। इसीलिए दुनिया भर में ये बात मानी जाती है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा घट रही होती है उस समय जो सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम ऐसा है जो आपदा के साथ उसमें बचाव, राहत और पुनर्वास के काम में योगदान दे सके तो वो रेडियो ही होता है।
0: 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्यवाही का असर पश्चिमी पाकिस्तान से लगी सीमा पर भी पड़ा। आकाशवाणी के प्रसारणों का प्रभाव उत्साहवर्धक था। आकाशवाणी जयपुर में उस दौर में कार्य कर चुकी प्रसारण कर्मी दमयंती कछवाहा बताती हैं।
3: बात उन दिनों की है जब पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपना स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, अतः उन्होंने वहाँ स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन छेड़ा हुआ था। सन 1971 में पाकिस्तानी सेना और इन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बीच चलने वाले प्रतिदिन के युद्ध का वर्णन आकाशवाणी जयपुर से लड़े सूरमा आज जी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः 7 बजे की न्यूज के बाद प्रसारित होता था। इस कार्यक्रम में पहले दिन के घमासान युद्ध का वर्णन होता था। आकाशवाणी जयपुर पर श्री गणपतलाल जी डांगी राजस्थानी संगीत के कंपोजर थे। कार्यक्रम संगीतमय और बहुत कर्णप्रिय होता था। डांगी जी स्वयं ही कविता के रूप में इसकी रचना करते थे। मुख्य स्वर डांगी जी का होता था। इनका साथ श्रीमती रंजना चौधरी देती थी। ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय था। लोग बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार करते थे, अर्थात लड़े सूरमा आज।
4: आकाशवाणी संवाददाता अजीत सिंह भारत पाक युद्ध के बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुए शिमला समझौते के समय शिमला में थे। वे बताते हैं,
5: शिमला समझौते के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ आए थे। इसकी कवरेज भी एक अनूठा अनुभव था। मैंने देखा कि रेडियो पत्रकार होने के नाते मैं ऐतिहासिक घटनाओं का प्रत्यक्ष दर्शी गवाह बन रहा था। ये सिलसिला बहुत दूर जाने वाला था।
4: एक रेडियो श्रोता सुशील बुडाकोटी ने आकाशवाणी से प्रसारित युद्ध समाचारों के बारे में बताया।
6: राष्ट्रीय स्वतंत्रता की वर्षों बाद भी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूर दराज के गांवों तक शीघ्र सशक्त और प्रामाणिक समाचारों सूचनाओं के लिए एकमात्र विकल्प होता था रेडियो। 1965 में भारत पाकिस्तान के दूसरे युद्ध में सितंबर माह में रोज रात 8:45 बजे रेडियो के पास लोग जुड़ते यह जानने के लिए कि कश्मीर सीमा पर से बमों को, बंदूकों को और तोपों के कारण न मालूम किस फौज के कितने जवानों की शहादत का समाचार आ जाए।
4: पाकिस्तान सीमा के निकटवर्ती जैसलमेर जिले के सांगड़ गांव के श्रोता मोहन दान चारण ने बताया।
7: 65 का युद्ध देख लो, फिर ये जो 71 का युद्ध देख लो, फिर ये कारगिल का युद्ध देख लो, या वर्तमान में जो अभी

0: ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इन सब में रेडियो एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये जो जैसलमेर की धरती है या बाड़मेर की धरती है, जो राजस्थान का पश्चिम इलाका जो पाकिस्तान बॉर्डर से साथ लगता है, यहाँ के लोगों ने हमेशा अपना बलिदान दिया है सुविधा या उसका जो एक तारतम्य किसी भी चीज को, अपन जो उत्सुकता रहती है, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर था तो जो बॉर्डर इलाकों में जहां टावर नहीं है या जहां नेटवर्क नहीं है तो वहां पर रेडियो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो उससे हमें यह भी प्राप्त होता था, चाहे 65 की लड़ाई हो, कारगिल युद्ध हो, तो यहाँ के अनेक लोग सेनाओं में भी बॉर्डर पास में कब कहां से कौन आ जाए, तो इन सारी चीजों की जानकारी हमें रेडियो से प्राप्त होती है।
1: केवल 1962 के चीन आक्रमण के कारण ही नहीं बल्कि 1965 में हुए भारत पाक युद्ध के कारण भी देश में अनाज की कमी हो गई थी। उस समय देश में अमेरिका से अनाज का आयात किया जाता था।
2: देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए स्वाभिमानी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश की जनता से अन्न बचाने का आग्रह किया। उनके इस संदेश को जन जन तक पहुंचाया आकाशवाणी ने। उस समय शास्त्री जी ने कहा था,
3: ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सके। मैं आपसे कहूंगा कि दो नारे आज लगें, दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक, एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है, एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये तीन नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जोर बोलिए जोर से, क्या धीमी आवाज से बोलते आप, जय जवान जय जवान जय किसान जय किसान जय किसान जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
2: प्रधानमंत्री के इस प्रेरक संदेश का देशवासियों पर गहरा असर हुआ। 70 के दशक में अनाज की कमी से उबरने का पुरुषार्थ जगाया कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन ने। उनकी हरित क्रांति की पुकार का परिणाम ये हुआ कि कुछ ही समय में भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर

0: देश में हरित क्रांति लाने में आकाशवाणी का योगदान भी स्मरणीय है। खाद्यान्न उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता के पीछे आकाशवाणी के खेती गृहस्थी कार्यक्रम के योगदान को बता रहे हैं फार्म रेडियो रिपोर्टर से निदेशक पद तक कार्य कर चुके सेवानिवृत्त बीसी पमार।
1: खेती और गृहस्थी यानी खेती और घर F&H यूनिट की स्थापना की गई। शुरू में इसको कुछ चयनित केंद्रों पर यानी 10 केंद्रों पर इसका आरंभ किया गया। विधिवत रूप से कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी कृषि में उपयोग बढ़ाने के लिए जोर दिया गया यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो दाता थे MS स्वामीनाथन 1966 के अंदर इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए काफी कार्य किया गया। MS स्वामीनाथन को इसका जनक मानते हैं और उन्हीं के कारण कृषि के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई कि आज हम आत्मनिर्भर हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ ही हमारे साथ देश के अंदर व्हाइट रिवॉल्यूशन जो वर्गीस कुरियन 1970 के अंदर, ब्लू रिवॉल्यूशन यानी फिशरीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अरुण कृष्णन, और इसी तरह से गोल्डन रिवॉल्यूशन इसको हम कह सकते हैं फ्रूट प्रोडक्शन के ऊपर, विशेष रूप से एप्पल के ऊपर क्रांति लाई गई, और येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड, और इसी के साथ साथ जैसे राउंड रिवॉल्यूशन है पोटैटो का उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो इस तरह से क्रांति आई है कृषि के क्षेत्र में, तो वो रेडियो का ही इसमें विशेष योगदान रहा है। जहां हम प्रसारण की बात करते हैं कृषि और ग्रामीण विकास के संबंध की जानकारी की बात करते हैं, प्रसारण को उसको देखते हुए 1985 तक देश में F&H की 64 यूनिट का विस्तार किया गया, और ग्रामीण प्रसारण की उपयोगिता को देखते हुए सभी जितने भी हमारे देश में केंद्र थे वहाँ F&H यूनिट की स्थापना की गई। खेती और गृहस्थी जो कार्यक्रम है उन्होंने देखा कि कृषि का ही विकास नहीं, जब तक सभी रूप से विकास नहीं होता, यानी महिलाओं की हम बात नहीं करें तो भी अधूरा है, और ग्रामीण बच्चों की बात नहीं करें तो भी अधूरा है, ग्रामीण युवाओं के लिए अलग, तो इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग है जो कार्यक्रम शुरू किया गया है। और विशेष रूप से इस कार्यक्रम को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्र में देश में कभी अलग अलग कैरेक्टर दिया गया, कहीं जो भूमजिकार के नाम से तो कहीं चौधरी जी के नाम से, कहीं मास्टर जी के नाम से, ताकि जो किसान है वो उसको देखे जो हमारा जो करैक्टर है, हमारे बीच के ही व्यक्ति है, हमारे साथ में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, हमारी भाषा में बातचीत कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्रभावी रहा है। कृषि का जैसे कार्यक्रम जहाँ भी होता है प्रसारण होता है लैब टू लैंड, जो किसानों लैब के अंदर अनुसंधान होता है वो किसानों तक पहुँचाने के लिए ग्रामीण प्रोग्राम का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। लैब टू लैंड हमारे जो कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं उसको लैंड तक किसान तक पहुंचाने के लिए यही कार्यक्रम है जो कि ज्यादा प्रभावी रहा है।
0: भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में कृषि वैज्ञानिकों और किसान भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन उन रेडियो प्रसारकों का योगदान समाज भूल गया जिनकी बातें किसानों को प्रभावित करती रही थी। बलबीर सिंह सहरावत उर्फ मुंशी भाई बताते हैं,
2: सन 1970 से लेकर लगभग 44 साल तक मैं अपने ग्राम संसार कार्यक्रम, कृषि जगत कार्यक्रम, कृषि चर्चा, इन कार्यक्रमों के जरिए आप के साथ में बातचीत हमारी होती रही है, और इसमें जो नई जानकारी आप लोगों के संबंध में हमारे पास पहुंचती थी वो वैज्ञानिकों के जरिए, किसी विभाग के जरिए, वो हम आप तक पहुंचाते थे, और रेडियो ही एक ऐसा साधन रहा है। जब कुछ भी नहीं था, टेलीविजन भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं, रेडियो ही एक ऐसा साधन था जो आप लोगों तक नई नई जानकारी पहुंचाता था।
3: किसानों को उन्हीं की भाषा में वैज्ञानिक खोजों की जानकारी देने वाले आकाशवाणी के खेती बाड़ी और किसानों से संबंधित कार्यक्रमों को श्रोता भूले नहीं होंगे। कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले इन पात्रों को रेडियो की भाषा में स्टॉक कैरेक्टर कहा जाता है। आकाशवाणी जोधपुर से खेतीबाड़ी कार्यक्रम के पूर्व सूत्रधार गोविंद त्रिवेदी उर्फ भोल जी के प्रसारण का एक नमूना सुनिए।
4: राम राम सा नमस्कार आप सब ने भोल जी रा घणे मान राम राम नमस्कार। ओ हो देखो तावड़ तपे कोई तपे जाने बट्टी होगी है अपना राजस्थान खास कर अपना आतुना राजस्थान की अगर बात करो जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर नागौर अटे तो कोई जाने लाए पड़े है बस मत पूछो तो विद्वान लोग जी रहा तो उठू बैठू मैं वे कई बार तरकीब बतावे कि पानी बचत की कर सको जो कम पानी में हिनान करनी है फिजूल पानी ढोलना कटी जो कोई गाड़ियां धोए है कोई लुगे लुके है पानी आवे देना आंगना धोना कटी जो नल खुलो है तो खुलो छोड़ देना उठे आप रे आगे जाप रहा तो वो पानी बचत नहीं होवे पानी आप रे नल देखो जटी बंद कर देना कर दे यूं पानी ढुलतो हुए तो एड़ा एड़ा छोटे छोटे उपाय जिका है अगर करो तो अपने पानी बचत री उपाय हो सके भाई जिका जानकार आदमी मारतो पे पहुंच बुद्धि है जड़ी है तो मैं तो देखो सा मारी हाथों आ जाऊं पतो करूं कि भाई सोलर प्लांट लगाना है मारे आप ही पतो कर फटोफट सरकारी इन योजना फायदा उठाओ ठीक है सा राम राम नमस्कार मान जोश हमारा।
0: कुछ

0: अन्य प्रसिद्ध स्टॉक कैरेक्टर यानी पात्रों के नाम इस प्रकार हैं जो उस दौर में लोकप्रिय रहे। जोधपुर के नारायण सिंह भाटी उर्फ भोम जी, पटना के रामेश्वर सिंह उर्फ लोहा सिंह, लखनऊ के चंद्रभूषण द्विवेदी उर्फ रमई काका, रायपुर के बिसाऊ भैया, जालंधर के जानकी भारद्वाज उर्फ ठंडू राम, जयपुर के नंदलाल शर्मा उर्फ गुणी उस्ताद, इंदौर के नंदाजी भैराजी और उदयपुर के इंद्र प्रकाश श्रीमाली उर्फ पटेल जी।
1: ग्रामीण श्रोताओं को प्रसारण के इन चरित्रों पर इतना विश्वास था कि ये लोग प्रसारण के दौरान उन्हें जो भी जानकारी देते थे सभी लोग उसे सच मानकर उसका ही अनुसरण करते थे। ये चरित्र केवल रेडियो के प्रसारक ही नहीं बल्कि श्रोताओं के हितैषी मित्र भी थे। जाने माने विज्ञान कवि यशपाल यश अपने ही अंदाज में रेडियो की यादें ताजा करते हुए ग्रामीणों के लिए इसकी प्रासंगिकता बताते हैं।
2: आकाशवाणी को हुए पूरे 90 साल, आई अपने गांव की याद मुझे चौपाल। बचपन के दिन गांव के सीधे सादे नेक, और था पूरे ही गांव में सिर्फ रेडियो एक। सन 65 में छिड़ गई हिंद पाक में जंग, सबके ऊपर था मुखर देश प्रेम का रंग। कितने हुए शहीद या किसने तोड़ा टैंक, गांवों में चर्चित हुए सेनाओं के रैंक। शाम और दोपहर को जब खबरों का वक्त, मेले सा माहौल था भरे खाट और तख्त। और जैसे जैसे हम बढ़े कुछ यौवन की ओर, जैसे जैसे हम बढ़े कुछ यौवन की ओर, ट्रांजिस्टर करने लगे गली गली में शोर। और घर घर में बजने लगा फिल्मों का संगीत, विविध भारती से हुई हर पीढ़ी को प्रीत। हॉकी हो या हो क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल, सुना रहा था रेडियो आंखों देखा हाल। और कैसेट प्लेयर का नया फिर आया एक दौर, कैसेट प्लेयर का नया फिर आया एक दौर, गीत गजल चुनकर सुनो चुनकर लता किशोर। और टीवी को घर में मिला कोना सबसे खास, लगा रेडियो हो गया बस कल का इतिहास। लेकिन जो बदलाव को कर लेते स्वीकार, वो जीवन के जंग में नहीं मानते हार। एफएम चैनल आ गए बदल गया सब सीन, और लगा कार में स्टीरियो समा हुआ रंगीन। पुनः रेडियो हो गया निज गौरव को प्राप्त, पीएमबी करते यहीं अपने मन की बात। पीएमबी कहते यहीं अपने मन की बात, पीएमबी कहते यहीं अपने मन की बात।
1: भारतीय जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदिकाल से रहा है, किंतु परिस्थितिवश एक समय ऐसा भी आया जब समाज अज्ञान, अंधविश्वास और रूढ़िवाद में फंस गया।
0: समाज को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर विज्ञान के प्रकाश में लाने का कार्य किया आकाशवाणी ने। बालकों, युवाओं और महिलाओं के लिए प्रसारित इसके विभिन्न कार्यक्रमों में ज्ञान और विज्ञान की बातें प्रसारित की गईं। आकाशवाणी में विज्ञान प्रसार अधिकारी से लेकर अपर महानिदेशक तक प्रसारण की पूरी व्यवस्था की जानकार अपर्णा वैश बताती हैं।
3: व्यापक जन चेतना की महती आवश्यकता देखते हुए देश के शीर्षस्थ जन प्रसारक आकाशवाणी ने यह बीड़ा उठाया। 70 के दशक में जन जन तक वैज्ञानिक चेतना और तार्किक विमर्श के प्रसार के लिए नियोजित तरीके से विज्ञान कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे। प्रमुख उद्देश्य था लोगों में वैज्ञानिक मानसिकता का विकास हो। चल रेडियो का जमाना आ गया था जब ट्रांजिस्टर के जरिए रेडियो की आवाज़ घर, खेत, दुकान और सड़क तक पहुंच रही थी। विज्ञान प्रसारण का मकसद नई खोजों, नए प्रयोगों, नई उपलब्धियों की जानकारी से इतर हर भारतीय की सोच को प्रभावित करना था, अंधविश्वासों को खंडित करना था। जो रूढ़ियां समाज में चली आ रही थी उन्हें आंख मूंद कर स्वीकार करने के पहले उन्हें तर्क की कसौटी पर कसना था, सवाल पूछने की आदत को प्रोत्साहित करना था, प्रयोग और निरीक्षण के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचने की पद्धति को बढ़ावा देना था। देश की अनुसंधान शालाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों से आम जनता का परिचय रेडियो के माध्यम से कराना एक महत्वपूर्ण कार्य था। सरल भाषा में विभिन्न अनुसंधानों की जानकारी देने का उद्देश्य था यह बताना कि इन खोजों के जन सरोकार हैं।
1: आपको याद होगा 3 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा ने सोयुज T-11 के माध्यम से अंतरिक्ष में यात्रा की थी। वे 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में रहे। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जॉइंट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राकेश शर्मा से बात की।
4: स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको?
5: जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहाज से अच्छा।

0: उपलब्धियों का आसमान बढ़ता गया। राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के 41 साल बाद जून 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक्सियोम मिशन में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने शुभांशु शुक्ला।
1: और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से बातचीत की, जिसे आकाशवाणी ने सजीव प्रसारित किया। उसका एक अंश आप भी सुनिए।
2: अच्छा शुभ, अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको?
3: प्रधानमंत्री जी, सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता, क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती, फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं।

कार्यक्रम के अगले अंक में आकाशवाणी की 90 सालों की गौरवशाली यात्रा के ऐसे ही कुछ और ध्वजवाहकों की जानकारी दी जाएगी। तब तक ऐसी सभी विद्वान प्रतिभाओं को नमन जिन्होंने आकाशवाणी को जन-जन के दिलों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका

प्रसारण की प्रतिध्वनियां। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। वाचन स्वर थे निशा भारद्वाज और देवेंद्र त्रिपाठी के। लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: टिकल जो पेन पॉइंट रहा है वो रहा है एक्सेस टू फाइनेंस, बिकॉज दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू स्केल अप और इन्वेस्ट बिकॉज दे डिडंट हैव इजी एक्सेस टू क्रेडिट एज वेल एज टू इक्विटी. सो प्रोबेबली दैट हैज बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू सम गुड पॉजिटिव पॉलिसी इंटरवेंशंस. एक क्रेडिट गारंटी स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू करी थी फॉर पर्टिकुलरली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एंड उसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 14 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है ताकि एंटरप्राइजेस आगे बढ़ करके आ सकें. और पिछले 3 सालों के अंदर इसमें 10 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी, 14 लाख में से 10 लाख करोड़ की जो क्रेडिट गारंटी है पिछले 3 ही सालों में दी गई है. इससे भी एक सपोर्ट मिली इनको एक्सेस करने के लिए. उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इक्विटी में भी इन्फ्यूजन करने के लिए सपोर्ट प्रदान करी है. पहले भी एक फंड सेटअप किया था गवर्नमेंट ने पूंजी निवेश करने का ऐसे एंटरप्राइजेस में जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, और इस बजट में भी एक एसएमई ग्रोथ फंड और एक टॉप अप फंड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस के नाम से कुछ और प्रयास किए हैं. तो एक्सेस आज के समय में आसान हो गया एंटरप्राइजेस के लिए. जो सबसे बड़ी चुनौती गिनी जाती थी वो उसका एक समाधान निकला है इन इंटरवेंशन के माध्यम से.
1: अगर हम समाधान की बात करें तो ये भी देखा गया है कि जो इक्विटी पार्टिसिपेशन आईपीओ के थ्रू भी हो पा रहा है, और यू हैव द निफ्टी where you have entrepreneurs, those startup ventures, they're able to access equity finance from the market itself. Along with that, banking का क्या रोल रहा है specifically when you're dealing with startup enterprises?
0: देखिए, banks का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है particularly for advancement of credit. Banks are generally insistent on collaterals whenever somebody seeks a loan from a bank. So banks normally are cautious that it should not become a non-performing asset tomorrow. The money should not be wasted away. So that is the reason why they exercise due diligence to make sure that they are loaning it to the right party and for a right project. So they usually insist on taking a collateral also. Now, these micro and small enterprises in particular normally do not have collaterals to provide to the banks. So that is where when the government steps in to provide credit guarantee, it wins the confidence of the banker also. Plus, it is a huge support to that enterprise when he has a viable project in hand and is not able to provide the collateral, it's a support to him. Plus, I think even for those institutions who are operating the ecosystem, for them, it generates confidence because the government is backing it. So this has made a significant and transformational impact, I would say.
1: A business requires human resources. You need skilled labor. You also require top management, middle level management who know what they are doing with skilled labor itself. How do you see Skill India playing a very important role across sectors where the opportunity has now come for labor intensive industries with businesses weaning away from China and now to South Asia?
0: You know, as we have moved from having labor intensive industries like textiles, auto, electronics, towards those sectors which are the new technology sectors, like electric vehicles, for example, robotics, we have use of automation in almost all sectors, health, advanced healthcare. So in these sectors, there is a different kind of skill set that is required from the young generation. And that is where Skill India has been a very important critical enabler. And besides Skill India, there are skill development schemes and programs which are being operated by various other ministries of the government. And government has made a conscious effort to ensure convergence among all these schemes. So in fact, even Ministry of MSME has a very important role to play in developing skills, particularly industry-grade training. And we have technology centers located pan-India, which are running these courses from 6 weeks to 6 months, sometimes even for a year. And they provide industry-grade training to the young generation. It offers them good opportunities of placement also thereafter.
1: ने भी देखा है कि काफी परिवर्तन आया है इन द लॉ व्हेन इट डीलिंग विद ह्यूमन रिसोर्सेज. इफ यू लुक एट वेयर द वर्कर्स आर वर्किंग, द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, द न्यू इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोड, कोड ऑन वेजेस फॉर इंस्टेंस, सो यू हैव रिविजन ऑफ द मिनिमम रेट फॉर इंस्टेंस, सो दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोज अप एंड द एंटरप्राइज इज पेइंग फेयर वेजेस टू द एम्प्लॉई कंसर्न. सो हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स ऑल्सो मोटिवेटिंग द लेबर to not only upgrade themselves, but also to provide value for the services?
0: You know, here again, I feel that this was a much awaited reform, which has come in the form of the new labor codes. We had multiplicity of labor laws in India, which were neither serving the purpose of labor welfare, nor were they very favorable for industry to expand and to operate. They were a major bottleneck because it was a huge compliance burden on the industry. Sometimes

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। प्यार भरा नमस्कार मेरा स्वीकार करें। वक्त हो गया है 11:46 और 6 सेकंड। तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज के साथ। गीत जो है उसे संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है याराना। एक बार फिर से आपको बता दूं, आपने ट्यून इन किया हुआ है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

11:51 और 2 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत। और अब आप सुनेंगे शैलेंद्र की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम है बॉबी।

बॉबी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. अगला गीत आप जो सुनेंगे वो होगा आरती मुखर्जी की आवाज में और गुलजार का लिखा ये गीत है, आरडी बर्मन का संगीत है और फिल्म का नाम है मासूम. इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार. अर्पणा को दें इजाजत. नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है।

0: गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 330 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर पाया गया है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून तक देश भर में 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं, जिससे संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। कृषि मंत्रालय ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत अब तक 17,800 से ज्यादा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 1,57,000 से ज्यादा लोगों को संतुलित खाद के इस्तेमाल, मिट्टी की सेहत के प्रबंधन और खेती के वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई है। इन प्रदर्शनों का उद्देश्य लंबे समय में मिट्टी की उत्पादकता को बेहतर बनाना और रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat yesterday, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts. Accounting for a crucial 1/5 of the nation's green energy share. Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी, साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat, the Prime Minister first visited Hazira and reviewing the ongoing industrial and infrastructure operations, Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth over 2,970 crore rupees in Daman, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor. India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26, with real gross domestic product estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Programme Implementation yesterday released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26.

हम दोनों फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। मोहब्बत की दास्तान कोई किताब का किस्सा नहीं होती, ये तो

दिल की उन धड़कनों में लिखी जाती है जिन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। कभी एक मुस्कान से शुरुआत होती है, कभी एक नजर से, और फिर धीरे धीरे कोई अनजाना शख्स जिंदगी का सबसे अपना बन जाता है। इस दास्तान में खुशी के रंग भी होते हैं, इंतजार की रातें भी, मिलने की खुशबू भी और बिछड़ने का दर्द भी। कभी दिल उम्मीदों के लिए जलता है तो कभी यादों की चादर ओढ़कर चुपचाप बैठ जाता है। मगर सच्ची मोहब्बत की खूबी यही है कि वो हर हाल में दिल को रोशन रखती है।

ना खुदा फिल्म का गाना आपने सुना नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने तुम्हारी पलकों की चिलमन में क्या छुपा है सितारों जैसा कोई राज है क्या जब भी नजरें उठती हैं तो लगता है जैसे रात का आसमान झिलमिला उठा हो उन झुकी हुई पलकों के पीछे शायद कोई अनकहा ख्वाब बसा है या फिर किसी के लिए संजोया हुआ एक मासूम सा एहसास जो भी है इतना जरूर है कि उसकी चमक सितारों से कम नहीं

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: सिलसिला फिल्म का गाना आपने सुना, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है।

सूचना शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वक्त हुआ है 12:33 और ठीक 12 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

मेरे ख्यालों की रह गुजर से देखिए वो गुजर रहे हैं जैसे किसी खामोश शाम में यादों के काफिले उतर रहे हों ना कोई आहट ना कोई शोर फिर भी दिल की हर धड़कन उनकी मौजूदगी का एहसास कर रही है वो सामने नहीं मगर ख्वाबों और तसव्वुर की दुनिया में आज भी उतने ही करीब हैं आपने सुना फिल्म ये इश्क नहीं आसान फिल्म का गाना अनवर की आवाज़ में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने

हीरो फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मनहर की आवाज में इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है मोहब्बत के हर सबक को पढ़ा मगर हासिल कुछ अधूरा है जिन्हें दिल की किताब का सबसे खूबसूरत अध्याय समझा वक्त ने बताया कि वो बस एक खूबसूरत फसाना था फिर भी इस दिल को शिकायत नहीं क्योंकि प्यार का एहसास ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है

सागर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने लहरों का शोर ठंडी हवाएं और दूर तक फैला हुआ नीला पानी भी तुम्हारी कमी को भर नहीं पाता ऐसा लगता है जैसे इस विशाल दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई अपना नहीं हर आती जाती लहर तुम्हारी याद लेकर आती है और हर ढलती शाम तुम्हारे इंतजार को और गहरा कर जाती है तुम्हारे साथ होने का एहसास ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है

लावा फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में और किशोर कुमार की आवाज में आपने गीत सुना। वक्त हुआ है 12:56 और ठीक 47 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। समाचारों के बाद गीत सुहाने आप सुनेंगे मेरे साथ। और फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

0: कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 330 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। भारत के मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर सेक्टर को मजबूत करने और सी फूड के निर्यात को बढ़ाने पर केंद्रित 2 दिवसीय सी फूड निर्यात राष्ट्रीय कार्यशाला कल विशाखापत्तनम में हुई। ये कार्यशाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग और आंध्र प्रदेश सरकार के समर्थन से आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान और के राम मोहन नायडू के साथ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि जून तक देश भर में 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं, जिससे संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat yesterday, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial 1/5 of the nation's green energy share. Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी। साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ

ससुराल फिल्म का गाना आपने सुना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। सुहाने पुराने गाने सिर्फ सुरों और शब्दों का मेल नहीं होते, बल्कि यादों का एक खूबसूरत कारवां होते हैं। इनमें बीते हुए लम्हों की खुशबू, मोहब्बत की मासूमियत और जिंदगी की सादगी बसी होती है। जब भी कोई पुराना गाना कानों में पड़ता है, दिल अनायास ही उन दिनों की ओर लौट जाता है, जहां छोटी छोटी खुशियों में भी एक अलग ही सुकून था। इन गीतों की मधुर धुनें समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर बार सुनने पर नए एहसास जगा देती हैं।

अनुपमा फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने। सुहाने पुराने गाने समय की धूल से कभी धुंधले नहीं पड़ते। उनकी धुनों में एक ऐसा जादू होता है जो बरसों बाद भी दिल को उसी तरह छू जाता है जैसे पहली बार जब उसे सुना था। कभी वो किसी भूली बिसरी मोहब्बत की याद दिलाते हैं तो कभी जीवन के उन सुनहरे पलों को जिन्हें हम पीछे छोड़ आए हैं।

आखिरी खत फिल्म का गाना आपने सुना भूपिंदर की आवाज में, कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। छेड़ो कोई दास्तान, कोई ऐसा फसाना सुनाओ जो दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक दे, कोई ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत की खुशबू हो, इंतजार की कसक हो और मिलन की मीठी सी मुस्कान भी, ऐसी दास्तान जो बीते हुए लम्हों को फिर से जिंदा कर दे और यादों के चिराग एक एक करके रोशन कर दे।

हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और रफी की आवाज में। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। एक पल की उस मासूम सी निगाह ने दिल पर ऐसा असर किया कि फिर खुद पर हमारा कोई इख्तियार ना रहा, न कोई वादा हुआ न कोई इजहार, मगर तेरी आंखों ने जो बात कही उसे दिल ने उम्र भर के लिए अपना लिया। उस एक नजर में जाने कैसा जादू था कि दुनिया की सारी रौनकें फीकी लगने लगी, हर तरफ बस तेरा ही ख्याल, तेरी ही तस्वीर और तेरी ही यादों का सिलसिला नजर आने लगा। दिल ने लाख कोशिश की संभलने की, मगर तेरी निगाहों के तीर इतने गहरे उतर चुके थे कि बच निकलने की कोई राह न बची।

मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। गुलशन बाबरा ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने।

वक्त हुआ है 1:36 और ठीक 30 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

चंगेज खान फिल्म का गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा और संगीत दिया हंसराज बहल ने।

बाबरे नैन फिल्म का गाना आपने सुना राजकुमारी की आवाज में। केदार शर्मा ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। जब शाम ढलती है और हल्की हल्की हवा चलती है, तब कोई पुराना गीत सुनना ऐसा लगता है जैसे यादों की किताब का कोई प्रिय पन्ना फिर से खुल गया हो। उन मधुर स्वरों में बीते दिनों की हंसी, कुछ अधूरे ख्वाब और कुछ अनकहे अफसाने धीरे धीरे दिल में उतरने लगते हैं।

मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने। ये पुराने गाने हर दौर में हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। समय बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, मगर इन गीतों की मिठास और इनका असर हमेशा वैसा का वैसा ही बना रहता है।

ठोकर फिल्म का गाना आपने सुना तलत की आवाज में। मजाज लखनवी ने इसे लिखा और संगीत दिया सरदार मलिक ने। ए गमे दिल अगर तू ना होता तो शायद मोहब्बत की गहराई का एहसास भी ना होता। दर्द ही तो है जो खुशी की कीमत समझता है और जुदाई ही तो है जो मिलन की अहमियत बढ़ाती है। इसलिए अब तुझसे लड़ना नहीं तुझे समझना सीख लिया है, क्योंकि जिंदगी की हर खूबसूरत दास्तान में थोड़ा सा गम भी शामिल होता है।

छाया फिल्म का गाना आपने सुना, तलत और लता की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। वक्त हुआ है 1:55, वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता के लिए गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में

0: पांच प्रमुख देशों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल हाइड्रोजन रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और दिल्ली के शकूर बस्ती डिपो में आधुनिक मेंटेनेंस सुविधाओं का निरीक्षण किया। उत्तर रेलवे के तिलक ब्रिज शकूर बस्ती रेल सेक्शन के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इलाके में चल रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लिया। शकूर बस्ती डिपो में श्री वैष्णव ने अत्याधुनिक रिट्रैक्टेबल ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम, बोगी पिट और बोगी लिफ्टिंग सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को ऑपरेशनल क्षमता को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि जून तक देशभर में 9,42,000 से ज़्यादा किसान बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं, जिससे संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat yesterday, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी। साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth over 2,970 crore rupees in Daman, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens of the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor. Prime Minister Narendra Modi has congratulated people of Uttar Pradesh for planting over 5 crore saplings on World Environment Day.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ।

लहू के दो रंग फिल्म से आपने गाना सुना किशोर कुमार की आवाज में फारूख कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने गीतों से भरी ये रात सुरमई है हवा में जैसे किसी पुराने प्यार की खुशबू घुली हुई है चांद की चांदनी खामोशी के पन्नों पर उतर आई है और मन के किसी कोने में भोली बिसरी यादों की महफिल सज गई है ऐसे में हर धुन दिल को छू जाती है हर गीत कोई अनकही कहानी कह जाता है

अब्दुल्ला फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में, इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं मेरे यार सा हसीन। चांद मुस्कुरा कर बोला, मेरी चांदनी में चमक तो बहुत है पर तेरे यार जैसी कशिश नहीं। सितारे लाखों हैं इस आसमान में मगर उसके जैसा नूर किसी में नहीं।

कभी कभी फिल्म से आपने गाना सुना मुकेश की आवाज में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुम्हें मेरी जिंदगी की हर अधूरी दुआ का जवाब बनाकर रचा गया हो, जैसे तुम्हारी मुस्कान मेरी सुबहों की रोशनी हो और तुम्हारा साथ मेरी शामों का सुकून। तुम्हें देखकर यूं लगता है कि किस्मत ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ लिखा होगा, वरना किसी अजनबी का यूं दिल की धड़कनों में बस जाना इतना आसान कहां होता है।

कुर्बानी फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

वक्त हुआ है 2:36 और ठीक 8 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। जी हां, रात सुरमई है, चांदनी नरम नरम सी बिखरी हुई है, हवाओं में खामोश एक सुंदर सा संगीत खुला हुआ है और सितारे आसमान पर जैसे कोई प्रेम गीत लिख रहे हों। ऐसे सुहाने पल में दिल बस यही चाहता है कि कोई अपना पास बैठे, कुछ न कहे और फिर भी हर बात समझ में आ जाए।

जाबाज फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और सपना की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी, आनंद जी ने। कितना प्यारा है ये साथ, जैसे ठहरी हुई शाम को कोई मधुर सहारा मिल गया हो। तेरी बातों में वो सुकून है जो बिखरे हुए ख्यालों को भी सजा देता है। तेरे साथ चलते हुए यूं लगता है मानो हर रास्ता मंजिल बन गया हो और हर लम्हा एक खूबसूरत याद। दुनिया की भीड़ में भी दिल यही कहता है, तेरा साथ है तो जिंदगी कितनी हसीन है।

हर महात्मा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और कंचन की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती जनाब, ये तो वो आईना है जिसमें हर कोई खुद को मुस्कुराते हुए देखना चाहता है। बस शर्त इतनी है कि अल्फाज में सच्चाई हो, वरना बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें दिल तक नहीं पहुंचती।

यादों की बारात फिल्म का गाना आपने सुना आशा और रफी की आवाज में मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने वक्त हुआ है 2:52 और ठीक 30 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही भारती शर्मा के साथ तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कल देर शाम रिक्टर स्केल पर 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप लगभग 10:04 पर आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्र अब रविवार आधी रात तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat yesterday, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे
2: After reaching Surat, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth over 2,970 crore rupees in Daman, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor. Prime Minister Narendra Singh has Modi has congratulated people of Uttar Pradesh for planting over 5 crore saplings on World Environment Day. Sharing a social media post of Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath on Mr. Modi said, "This amazing success associated with the Ek Ped Maa Ke Naam campaign shows that today people are completely committed to environmental protection." He expressed confidence that such initiatives will be very helpful in realizing the green future of Uttar Pradesh as well as the entire country. He added that it will inspire every countryman. Sharing a social media post of Assam Chief Minister Hemant

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपके दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं और एक प्यार भरा नमस्कार आप सबको। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ।

सच्चे प्यार की दुआएं अक्सर रात की तन्हाइयों में निकलती हैं और शायद ऊपर वाला भी उन्हें मुस्कुराकर सुनता है।

जब कोई दिल में उतर जाए, जब कोई दिल में उतर जाए तो फिर हर धड़कन उसी का नाम लेने लगती है, और कब वो दिल में बस जाते हैं पता ही नहीं चलता।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

कभी कभी प्यार शब्दों से नहीं बस एक पुकार से महसूस होता है, जब दिल किसी अपने की आवाज़ सुन के बेचैन हो जाए तब हर खामोशी भी मोहब्बत का पैगाम बन जाती है।

मोहब्बत, मोहब्बत जब सच्ची हो तो हर सपना हकीकत जैसा लगने लगता है। दिल यही दुआ करता है कि हर प्रेम कहानी को उसका खूबसूरत मुकाम मिले और हर इंतजार खुशियों में बदल जाए।

जब दिल किसी की चाहत में खो जाए, जब दिल किसी की चाहत में खो जाए तो हर रास्ता उसी की ओर जाता है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत एहसास वही है जब किसी की मुस्कान में अपनी सारी खुशियां नजर आने लगे।

आज की सुहानी रात में प्यार की उन मधुर भावनाओं को महसूस कीजिए, जहां एक दिल पुकारता है और दूसरा दिल उसकी धड़कनों में जवाब देता है।

और इन्हीं प्यार भरी लाइनों के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। जल्द हाजिर होंगी यानी 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। तब तक के लिए आपसे मैं ले रही हूँ अनुमति। छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम

0: जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मिजोरम में सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट के उम्मीदवार के लाल तलुवांग कीमा ने इस महीने के 18 तारीख को होने वाले राज्य सभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। सूत्रों ने बताया कि मिजोरम में मुख्य विपक्षी पार्टी MNF सोमवार को अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। कांग्रेस और भाजपा राज्य में अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही हैं क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए जरूरी 4 विधायकों का न्यूनतम समर्थन नहीं है। मिजोरम के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान इस महीने के 18 तारीख को अपने राज्यसभा सदस्य चुनेंगे। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat yesterday, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth on the nation's green energy share. Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी, साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat, the Prime Minister first visited Hazara and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth over 2,970 crore rupees in Daman, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor. Prime Minister Narendra Modi has congratulated people of Uttar Pradesh for planting over 5 crore saplings on World Environment Day. Sharing a social media post of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, Mr. Modi said, "On this amazing success associated with the Ek Ped Maa Ke Naam campaign shows that today people are completely committed to environmental protection." He expressed confidence that such initiatives will be very helpful in realizing the green future of Uttar Pradesh as well as the entire country. He added that it will inspire every countryman. Sharing a social media post of Assam Chief Narasra Hemanta Biswa Sarma, who informed the people of Assam planted over 1.02 crore plants on Environment Day, the Prime Minister congratulated the people of Assam, especially the Nari Shakti of the state, for taking the lead in this effort aimed at building a sustainable planet. He said it's a commendable feat. India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Programme Implementation yesterday released the provisional estimates of annual GDP for the financial year.

एक बार फिर से हाजिर हो लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। आप सब सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म रानी रूपमती से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार SN त्रिपाठी।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म नैया से यशुदास की आवाज में। और इस गीत के संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रोग्राम है अरुणिमा. अगला गीत सुनते हैं फिल्म सती सावित्री से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में. गीतकार भरत व्यास, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल.

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म खामोशी से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, संगीतकार जतिन ललित।

और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत स्वदेश फिल्म से, उदित नारायण हरिहरन कैलाश खेर की आवाज में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार ए आर रहमान।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले लीजिए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर भोर सुहानी। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत और सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में आयोजित किए गए प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मिजोरम में सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट के उम्मीदवार के लाल तलुआंग कीमा ने इस महीने की 18 तारीख को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। सूत्रों ने बताया कि मिजोरम में मुख्य विपक्षी पार्टी MNF सोमवार को अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है। मिजोरम के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान इस महीने की 18 तारीख को अपने राज्यसभा सदस्य चुनेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मेघारा में कल खेले गए

सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम को सेमीफाइनल में चीन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और एक बार फिर से हाजिर हो लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं। भोर की पहली किरण जब धरती को सुनहरी चादर ओढ़ती है तब मन भी नई उम्मीदों की धुन गुनगुनाने लगता है। तो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ।